0: फल फिके फुल बक बके कम नावे पत मिटत निवी नानका गुण चंगे तत् सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तत् राजो तो लिए निवे सो गौरा हो अपराधी दुना निवे जो हंता मर गाहे सिस निवाये क्या थी ए जारी देख सूते जाहे महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन सिलबू सिलबू समादन मुख झूठ विभूखन सा त्रिपाल तिहार विचारन घर माला तिरकुले लाटन दो धोती।

0: सुचा हो के जेविया लगा पण सलो कौते जाए छटे किसे हो लगा दो अन्न देता पानी देता बसंतर देता लो पंचमा पाया किरतता हुआ पाक पोहित पापी सोतन गड्या थुका पया तित जित मुख नाम ना उतरे बिन नामे रस खाए नानक वे जानिए जित मुख तुका पाए महला पहला
1: पंडित मियां

जलो ऐसी रीत जित में प्यारा विश्व नानक साई पली परीत जित साहिब सिति पत रहे सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक क्या सुनिंदा कू

जो सुनिंदे सच तन्ही संत तिन खोल कुमाई जिन प्रभ श्रवनी सुने आराम से सहज सोहेले जिन हर हर रसना पने आराम से सहज सुहिले गुण है अमूल्य जग तो धारण आए

जिनको कृपा करी मेरे ठाकुर, तिनका लिखा नगनिया, कहो नानक दिस खोल कुमाई। जिन प्रभु सबनी सुनिया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

फिर जी सतगुरु ने पहले पदे की संपूर्णता की। कहिंदे जिन खौ कृपा करी मेरा ठाकुर, जिन्हां दे उत्ते कृपा कर दित्ती मेरे ठाकुर ने, तिन का लेखा ना गणिया। उत्थे उन्हां दा कोई लेखा जोखा नहीं गणिया जांदा, फिर कोई लेखा नहीं। कहो नानक तिस कोल कुमाई, नानक जी आखो मैं उहदे तों वार नहीं जाना जिन प्रभ सरवणी सुनिया, जिन्हां ने अपने कन्नां दे नाल रब नूं सुन लिया। ख्याल करो हुण अकाल पुरख की रहमत हुई, तिनका लेखा ना गणिया, लेखे जोखे तो बच गए। लेखे जोखे तो बचिया उदो ही जा सकता जदों लेखा करन वाला आप कह दे भी चल तैनू छड्या, उदू बिना नहीं। जदों संसारक तौर पर भी जिक्र करिए, कोई अहलकार कोई भी पाया रखण वाला ये कवे तू परवाह ना कर मैं तेरा लेखा राजे कोलों पढ़वा दूँ, जिन्ना चिर राजा ना आखे भी तेरा लेखा बख्शिया उन्ना चिर वजीर अहलकार की कर लैणगे जी। हाँ अहलकार ये जरूर कह सकता जी मैं सिफारिश करदा, राजा कवे मैं मानदा नहीं, उत्थे अहलकार की करे। राजा अहलकार नूं कवे भाई इहदा लेखा पाट दिओ, अहलकार कहेगा भी मैं जी अजे सोचदा। हाँ यह जरूर हो सकता कि अहलकार ये कवे जी तुसी कहने हो लेखा बख्श दिओ, इहदा तां लेखा ही बड़ा लमेरा। अगो राजा फिर कह देगा तैनू मैं क्या भी इहदा लेखा बंद कर दे, उत्थे अहलकार कुछ नहीं कर सकता। इसे तरह साहिब की बाणी का एक बचन आप पढ़ते, धर्म राए दर कागद फाड़े जन नानक लेखा। जदों अकाल पुरख ये कह रहे भी मैं कह रहा लेखा बख्श दे, उत्थे कौन करेगा लेखा। फिर बचन एक लेखा रब मंगेसी आ, लेखा मंग कौन रहा, और जेड़ा लेखा मंग रहा जे वो ही कह दे भी आज तो तेरा लेखा खत्म, फिर लेखा किन्ने पुछना है। सतगुरु जी की बाणी पढ़ो, लेखा कोई ना पुछ ही जा हर बख्शंदा। जो रब बख्श दे मालक कहते लेखा कोई पुछद ही नहीं। अज वचन की किते कहिंदे जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर, जिन्हां उत्ते मेरे मालक ने कृपा कर दित्ती तिनका लेखा ना गणिया। गणिया मतलब गिणतियां, उत्थे फिर लेखे की कोई गिणती नहीं, उत्थे ते भाई वरका ही पाड़ दिता जांदा वी बस हुण तू राजे नाल जुड़ गया, तू बख्शिश करन वाले नाल जुड़िया, जिहदे नाल तू जुड़े हैं इत्थे तक ते लेखे की पहुँच हुंदी होई कोई नहीं। लेखा तो हेठां हेठां ही रह जांदा ना, कर्म धर्म पाखंड जो दीस है तिन चम जम जागाती लूट है, ये हेठां हेठां ही रह गया। जे निर्वाण कीर्तन गा वो करते गा निमक सिमरत जित, उत्थे ते छुटकारा ही है, उत्थे कोई फाही नहीं है। उत्थे फिर ये नहीं पुछया जाना किन्ना जपया किन्ना नहीं जपया, तू घट जप गया नहीं, जे जपया फिर किनका एक जिस जीव वसावे ताकि महिमा गनी ना आवै। कांखी एक है दर्स तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो, मालका जिन्ना ने तेरा एक किनका भी जपया उन्हां दी किते संगत दे दे, उन्हां नाल जुड़ के मेरा भी उधार
ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਤਿਨਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੋਲ ਘੁਮਾਈ ਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੁਰ ਕੋ

चोर दुख रोग संताप तरे सुनी सच्ची वाणी साधु साजन पै सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है पर पूरे

सगल समगरी तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगव

सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण तेजिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नौ निदावेताए सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे

हरिया सिखी किसान स्वसन अल निवाही तिना दिक मई दत्यांतर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दत्यांतर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तर से अर आयत देख तेग फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखानू सिखी दान गेस दान रत दान वेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सर जिया दे दर्शन स्नान चौंकिया झंडे वंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन्नी वा मत उची मत पथ दा राखा वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दाता जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। हे निमानियां दे मान नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट सचे पिता वाहिगुरु। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे अमृत वेले दे दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर श्री आसा दीवार दे शब्द कीर्तन।

कहो टल गुर सेवियै एनस सहज सुपाए। दर्शन परसै गुरु के जन्म मरन दुख जाए। सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

आई देकर अपनी बात किन कहिए क्यों देखिए भाई करता एक अकथ गुरु गोबिंद सलाहिए पाई जिस

ढेकिल वेख कटन हार मन तन शीतल होया पाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति पाई ढेकिल वेख कटन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहवंगुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निरवैर

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दशमी। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोविंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदा बेताए। सब थाई हुए सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां। हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता दिना प्यारियां। सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्ना सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए। खोपरियां

हरिया सिखी किसान स्वसनाल निवाहित नादिक मई दात्या अंतर के बोलो जी पंजान तख्ता सर्वात गुरुद्वारियां दात्या अंतर के बोलो जी प्रथमे सर्वात खालसा जी की अरदास है जी सर्वात खालसा जी को वाहे गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तर से हरि आयत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दान सरदान नाम दान श्री अमृत सर जिया दे दर्शन स्नान चौंकिया झंडे वंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मानी वा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामा दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दान सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो हे निमानियां दे मान नितानियां दे तान ओटियां दी ओट सचे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आपनियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जी विखे शब्द कीर्तन से पौड़ियां आनंद साहब जी के पाठ की अरदास है जी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी आप जियां दे दर ते समूह साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी तिल फुल पेटावां दर प्रवान करनियां यात्रावां सफल करनियां दरों करों गुरसिखी जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शनियां कलंगी धर सच्चे पातशाह जीओ आप जियां ने कृपा करनी मेहरामत करनी आउण वाला समा आप जियां दी याद आप जियां दे प्रेम दे विच बतीत करवा मना आप जियां दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजर दर प्रवान होवे आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो हुक्मां अनुसार जीवन जाउण दी समर्था बख्शो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला दोहरा गया भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने ओ जो प्रभु को

श्लोक महला पहला तरु सुखरो जस कम न हो तू करता करना मैं ना ही जाहू करी ना हो बलिहारी कुदरत बसया तेरा अंतना चाई लिख रहा जात मैं जो जोत मैं जाता कलकला भरपूर रह तू सच्चा साहिब सत सवाल जिन की सो पार पिया

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਲ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵੈਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀਂ ਠੱਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਊਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲਿਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹੋ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦੈਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸਨਾਥ ਰਾਹ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਿਹੇ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵੇਂ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪਤਰ ਮੈਂ ਜੰਤਿਓ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਹਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਠਾਕੁਰ
कहे मन पौ करया ऊडे ऊड़ आवै सौसा तिस पाछे बचरे छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परावरिया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परावरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सबदियाँ वहीं सबदियाँ वहीं तुझी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्या बहु संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहीं हर ते आवहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तेन टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप ताप ही जप ही बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहा।
सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुग वाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया ओ सब तुझी माही, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सदे ही आख वखाणे। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ में दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखे हैं जाने हैं सोए, जन नान गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़े पाईले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंकजो माह पग नहीं चले। हम दिखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड़ मना। हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरणा। जैना तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मान खुदे हुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काय तेरा किते ना काम। मिल साध संगत भाजे केवल नाम। श्रृंगला पवजिल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फते, पातशाही दसवीं। कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबय तुम काबो हो। आभात दे मोहे बचाबो हो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सबे रिन को आश संगरिए, पूरन होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छा कोई अवरना त्याऊं। जो वर चाहो सतम ते पाऊं, सेवक सिख मार तारिये। चुन चुन शतर हमारे मारिये, आभात दे मुझे उबरिये। मरण काल का त्रास निविरिये, हो जो सदा हमारे पच्छा। श्री अस्तु जो करी हो रक्षा।
राख लियो मोहे रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता। काल पाए ब्रह्मा बपथरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चिंटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने। जब युद करख करा कर तारा, प्रजा तर तव देह अपारा। जब आ करक कर तुहों कब हूँ, तुम मैं मिलत दहे धर सबूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत बेद भेद अर आलम। रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीर अनाद असंभ। ताका मूढ़े उचारत पेदा, जाको पेव नबावत बेदा। ताको करपाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदाशिव, ड्रंकार का चीनत न भिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जय पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। इक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा। अंड जे रज से तज कीनी, उत्पज खान बहर रच दीनी। कहो भूल राजा हवै बैठा, कहो सिमड़ वयो शंकर अकैठा। सगरी सृष्ट दखाए अचंपव, आजुगा स्वरूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे उबारे असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता। जे आस तो जे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहाए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल को इक बार ते है, ताके काल निकट नह अह। रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्कला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो, ताके ताप तनक मैं हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई,
दुष्ट सहा शवय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसती ताहे ओवारा, जिनर नाम तिहारो कहा दर्द दुष्ट दुख तेरा। अड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठोर मो हो सही दुष्ट दुख दे ले हो बचाई। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी। सर ठोर मो हो सही दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तर नहीं आन्यो। राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सभा बहुपेद कहें हमें एक ना जान्यो। सिरियस पाण कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखाने दोहरा। सगल दो आर कौ छाड़ के गए हो तो हारो द्वार। बही गहे की लाज अस गोविंदास तोहार। सगल दो आर कौ छाड़ के गए हो तो हारो द्वार। बहिंगे की लाज अस गोविंदास तोहा। राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां बाया सह सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां। शब्दो तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले। हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना। सवना गलना सिमरत स्वामी सो क्यों मनो मसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सच साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किच है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया। वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे। सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा। जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन वसया। जैन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहों।
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਛਵ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਰਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਸੁਖੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪੋਨੀ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਪਰ ਉਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੋਨੀ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਪਰ ਉਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭਸੇ ਆਧਾਰੋ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਔਰ ਧਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਾਇਓਈ ਤਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ

0: पया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तुम ठाकुर तुम पहरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम

नाम दान दे जन अपने दुख दर्द का अंता रहाओ, जाके कर सब किछ है पाई, नौनिध भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे भाई, ऊंचा गम अपार जी जंत प्रतपाल दफाई, नित नित करदा सार सतगुर पूरा पिटिए भाई, शब्द मिलावण हार सच्चे चरण सरभिये पाई, प्रंपो होवे नास मिल संत सबा मन मजिए भाई, हर के नाम निवास मिटे अंधेरा अज्ञान तपाई, कमल होवे परगास गुर बचनी सुख उपजे पाई, सब वल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सब की तूर कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पिख सुने हजूर जित दिन बिसरे पार ब्रह्म पाई।

और प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश तिस पावे तामेल लिपाई, हृदय ना मन वास गुरुमुख कमल प्रगासिये भाई, हृदय होवे परगास प्रगट पया परताप प्रभ भाई, मोलिया धरत आकाश गुर पूरे संतोखिया भाई, अंस लगा पाओ रसना राम रवे सदा भाई, सच्चा साध सो आओ करनी सुन सुन जीवया भाई, निचल पाया थाओ जिस पर तीत न आवी भाई, सोजी अड़ा जल जाओ बहुगुण मेरे साहेबे भाई।

भाई देन थावे था रिज कसंबाई सासाद भाई गुड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस कर्माओ तिस बिन कड़ी न जीविए पाई सर्ब कला पर पूर सास गिरास न विसरे भाई पिखों सदा हजूर साधु संग मिलाए पाई सर्व रहा पर पूर जिना प्रीत न लगिया पाई से नित नित मर्दे चूर अंचल राय तराया पाई पौजल दुख संसार कृपा नद निहाल पाई की तोन अंग अपा मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम अधा नानक तिस शरणागति भाई जय किल विक कटन हा मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम अधा नानक तिस शरणागति भाई जे

नित नित जिड़े संभालियन देखै गा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तसदाते कमन समार संबत साह लिखिया मिल कर पावो तेल दियो सजणिया सीसड़िया ज्यों होवै साहिब समेल कर कर इहो पहुँचा सदड़े नित पवन सदण यारा सिमरियै नानक सिधे अवन रागा समला पहला छे कर छे गुरु छे उपदेश गुरु गुरे को वे सनेक बाबा जय कर करते कीर्त होए सो कर राख बधाई तो राव विश्वच सिया कड़िया पैरा तिती वारी माँ हुआ सूरज एको रुत अनेक नान करते के केते वेश राग तना श्री महला पहला गगन मथाल रव चंद दीपक बने तार कमंडल जनक मोती धूप माले आण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त न एक तो ही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोई सब मै जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मै चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस पावै सुआरती होए हर चरण कवल मकरांद लोभित मनोवंदन मोहि आई प्यासा कृपा जल दे नानक सारे कोय जानते त्रिणाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरे अमल साधु खंडल खंडाए पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान आरले मंडल मंडाए कर साधु उंजली पन वड्डाए कर नौत पन वड्डाए रहाओ साकत हर साधन जाने अंतने अंतरों मैं कंडाए ज्यो ज्यो चरै चुभ दुख पावे जम काल सह से डंडा है अर्जन हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडाए अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड बह मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख पुट वड्डाए जन नानक नाम अधा टेक है हर नाम में सुख मंडाए राख गौड़ी पूर्वी माला पंजवा करो बिनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेलाइया खार चलो हर लाह आ गै बसन सुहेला उदगट दिन सरे नारे मर गुरम लका सुबारे रहाओ ए संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वै रस आकात कता तन जानी जा कोय सोई ब्याज वर गुरु ते मने बसेरा निज कर मैल पावो सुख सहजे।

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर, कवन उपमा दियो कवन सेवा सरेओ, एक मुख रसना रसो जुग जोर कर, फुन मन बच क्रम जान अनत दूजा ना मान, नाम सो अपार सार दीनो गुर रिद तर, नल कव पारस परस कच कंचना होए, चंदना सुबास जास सिमरत अन तर, जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे, जी हो बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर, राज जोग तखत दियन गुर राम दास, प्रथमे नानक चंद जगत पयो आनंद, तारण मनुख जन कियो परगास, गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पांच पूत बस कीने जमत ना त्रास, गुर अमर गुरु श्री सत कलजुग राखी पत, अगण देखत गत चरण कवल जास, सब बिद मान्यो मन तब ही पयो प्रसन्न, राज जोग तखत दियन गुर राम दास, रड जिस है तार्यो तरत अर व्योम अर पवन, ते नीर सर अवर अनल अनाद की यो, सस रिख निस सूर दिन सैल तरु फल फूल दियो, सुर नर सपत समुद्र के तार्यो त्रिपवन जास, सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर परगास, सोई एक नाम हर नाम सत पायो गुर अमर प्रगास,
2: कच्छो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो, बिखते अमृत होयो ना।

कलयुग कारण करण समर्थ कलयुग सुनत संवाद शब्द जिस केरे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस्त तह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाए परेरे जो हर

मन ठोर बसो रस बासन स्यों जो दहंग दिसतायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो।

कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरयो, निसबासुर एक समान त्यान, सो नाम सुने सुत पान डरयो, पन दास सो आस जगतर गुरु की, पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ तरयो।

विस्मादनाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग प्रहजन विस्माद पाण विस्माद पाण विस्माद अग्नि कढे वडाण विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे पुराणी विस्माद संजोग विस्माद विंजोग विस्माद पक विस्माद पौ